0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: सदर ईरान मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि अगर वाशिंगटन इंतजामी अबूरी माहदे की जिम्मेदारियां पूरी करे तो तेहरान भी उसके मुताबिक जवाब देगा। ईरानी अवान सदर के बयान के मुताबिक पेजिशकियान ने किर्गिस्तान के दारुलहुकूमत बिश्केक में मुनक़िदा शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान ममलिकत के इजलास में खत्ते में ताज़ा तरीन हालात पर खिताब किया। पेजिशकियान ने अमरीका के उनके मुल्क के खिलाफ 28 फरवरी से जारी हमलों को शंघाई तआवुन तंजीम के एक रुकन और एक कदीम तहजीब पर हमला करार दिया है। उन्होंने याद दहानी कराया कि पाकिस्तान और कतर की सालसी में तकरीबन 3 माह तक जारी मुजाकरात के बाद जून में एक माहदे तक पहुंचा गया था जिसे इस्लामाबाद मुफाहिमत नामा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वाशिंगटन इंतजाम पर वादा खिलाफी का भी इल्ज़ाम लगाया। ईरानी सदर ने कहा कि इस दस्तावेज़ जिस पर अमरीकी सदर के दस्तखत मौजूद थे इसके साथ अमरीकी वाबस्तगी 2 हफ्तों से भी कम अरसे तक बरकरार रही और उसके बाद इस मुल्क ने गैर माकूल मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि अमरीका की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने मुतनासिब जवाब दिया है। सदर पेजिशकियान ने कहा कि ईरान लुबनान गजा और मगरबी किनारे में हालिया पेशरफ्तें इस बात की अलामत हैं कि बैन अवी कानून के असूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ताकत और दबाव पर मबनी तरीक़ाकार जारी रखा जा रहा है जो न सिर्फ मजकूरा इलाकों की सलामती बल्कि पूरे खत्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन रहा है।
2: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की धमकी दी और इसके रहनुमाओं पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अफवाज पर ईरानी हमलों का फौजी जवाब देने की धमकी दी और 1 लाख से ज्यादा मुजाहरीन की हलाकतों के इल्ज़ाम में ईरानी क़यादत पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। पीर को फॉक्स न्यूज़ के लिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम इन पर सख्त हमला करेंगे, इन्हें कोई जवाब मिलना चाहिए। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को सरकारी तौर पर नाकाम कौम करार दिया और इसके अहलकारों को मुजाहरीन को बड़े पैमाने पर कत्ल करने का कसूरवार ठहराया है। ट्रुथ सोशल से जारी करदा एक बयान में ट्रंप ने 1 लाख से ज्यादा मुजाहरीन की हलाकत का दावा किया और कहा है कि इन पर इंसानियत सोच जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए।
1: अमरीकी उमूर खारजा ने ऐलान किया है कि अमरीका ने इराक को बेल 412 EPX और बेल 407M हेलीकॉप्टरों और इनसे मुतालिक आलात की फराहमी पर मुश्तमिल 800 मिलियन डॉलर मालियत की फौजी फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में हेलीकॉप्टर GAU-19 3-बैरल मशीन गन्स, रॉकेट सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड सेंसर्स, मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन सिस्टम्स, रेडियोज, स्पेयर पार्ट्स और ग्राउंड सपोर्ट का सामान भी शामिल है। वजारत के बयान के मुताबिक इस फरोख्त के पैकेज में पायलट और देखभाल की तरबियत के साथ साथ अमरीकी हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों की इंजीनियरिंग, तकनीकी और लॉजिस्टिक मदद भी शामिल होगी। वजारत ने यह भी बताया कि यह मुजवजा फरोख्त एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाकर अमरीका की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मफादात का तहफ़ करेगी। वजारत के मुताबिक इस पैकेज का मकसद खासतौर पर इराकी रोटरी विंग ट्रांसपोर्ट, जासूसी और फिजा से ज़मीन पर हदफ बनाने की सलाहियतों को बेहतर बनाना है ताकि मुल्क की मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात से निमटने की ताकत में इजाफा किया जा सके।
2: अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी मुआहदे से पहले वेनेजुएला की नाकाबिले यकीन हद तक कीमती तेल की दौलत बेकार पड़ी थी। ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और काराकास के दरमियान होने वाले नए मुआहदे से कबल वेनेजुएला के तेल के जखायर एक नाकाबिले यकीन हद तक कीमती लेकिन बेकार पड़ी कदर की नुमाइंदगी करते थे। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि यह वेनेजुएला के लिए भी बहुत अच्छा मुआहदा है क्योंकि दुनिया की ताकतवर और दौलतमंद तरीन कंपनियां वेनेजुएला में दाखिल हो रही हैं। इससे पहले वहां तेल की नाकाबिले यकीन हद तक कीमती दौलत बेकार पड़ी हुई थी। उन्होंने मजीद कहा है कि अब हम ये सब हासिल करेंगे, हम ये तेल निकालेंगे। ट्रंप ने कहा है कि खाम तेल का तमाम हिस्सा सफाई के लिए अमरीका की रिफाइनरियों को भेजा जाएगा।
1: अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना की एक अटॉर्नी ने रियासत की रिहायशी 17 साल लड़की को कत्ल में मामलत का कसूरवार ठहराया है। इतला के मुताबिक मजकूरा नौजवान लड़की ने मई में सैन डियागो कैलिफोर्निया की एक मस्जिद में होने वाले मुसल्ला हमले की बराह रास्त नशरियात जारी की और हमलावर के लिखे हुए सफ़ेद फाम बर्तरी के नारों वाले पर्चे भी तकसीम किए। नौजवान लड़की को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया और स्कूलों के दोबारा खुलने से चंद दिन कबल पीर के रोज़ एक ग्रांड ज्यूरी ने इस पर फर्द जुर्म आयद की। फोरसाइथ काउंटी के ज़िले अटॉर्नी जिम ओ'नील ने कहा है कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि स्कूल खुलने वाले हैं और वो दोबारा स्कूल जाने वाली है, इलावाजी हफ्तावार तातीलात और मजहबी आयाम भी करीब आ रहे हैं, हमें मालूम नहीं था कि वो क्या कुछ कर सकती है। इत्तलात के मुताबिक हमला आवरों ने मजकूरा हमले के अलावा एक यहूदी इबादतगाह को भी निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी।
2: یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت کیف اور اس کے اطراف میں ایک بڑے روسی میزائل

प्रोटोकॉल की सोमालिया के लिए असल अहमियत सिर्फ कस्टम टैरिफ का खात्मा नहीं है, बल्कि चीन को समंदरी मसनूआत की बरामद के लिए ज़रूरी मुआयना, करंतीना और मयारी तरीक़ाकार को कायम करना है, जिससे मौजूदा टैरिफ के फ़ायदे को अमली तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। इस पेशरफ के इक्तसादी असरात का जायज़ा सिर्फ बरामदी आदाद व शुमार से कहीं ज़्यादा वसी पैमाने पर लिया जाना चाहिए। सोमालिया तकरीबन 3,900 किलोमीटर तवील साहली पट्टी और 1.2 मिलियन मुरबा किलोमीटर के खसूसी इकतसादी जोन का मालिक होने के बावजूद अब तक माहिगीरी के शोबे की सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। FAO के आदाद व शुमार के मुताबिक सालाना मछली पकड़ने की मकदार तकरीबन 25 तक 30 हज़ार टन है, जबकि इसकी असल सलाहियत 800 हज़ार टन तक पहुँचने का तखमीना लगाया गया है। अंदाज़ा है कि इस शोबे की सालाना आमदनी तकरीबन 135 मिलियन डॉलर है और ये GDP का तकरीबन 2% बनता है। इसलिए मसला मछली के वसाइल की कमी का नहीं, बल्कि कोल्ड चेन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट्स, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे, तरबियत याफ्ता इफरादी क़ुव्वत और बैन अल-अक़वामी मयारात के मुताबिक सर्टिफिकेशन की सलाहियत की कमी का है। इस लिहाज से चीनी मार्केट का खुलना सोमालिया के लिए एक वैल्यू चेन बनाने का मौका पैदा कर सकता है। अगर बरामदा सिर्फ इस शक्ल में बढ़ती हैं कि गैर मुल्कियाँ बड़े पैमाने के जहाज सोमाली पानियों से मछलियाँ पकड़कर बरह रास्त चीन भेज दें, तो मोगादिशु को मिलने वाला इकतसादी फ़ायदा महदूद रहेगा। इसके बरअक्स अगर मछलियों को सोमाली बंदरगाहों पर उतारा जाए, उनकी दर्जा बंदी की जाए, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाए, फिर कोल्ड चेन के जरिए बरामद किया जाए, तो इससे साहिली शहरों में रोजगार के नए मौके और ज़ेली शोबे पैदा हो सकते हैं। आलमी बैंक भी सोमालिया के लिए समंदरी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सलाहियत में सरमायाकारी को निजी शोबे की तरक्की के अहम अनासर में से एक करार देता है। ताहम इस माहदे का सबसे हसास पहलू समंदरी खुदमुख्तारी और गैर कानूनी माहीगीरी है। सोमालिया के तवील साहिल और रियासती सलाहियत की कमजोरियाँ बरसों से गैर कानूनी, गैर रिपोर्ट शुदा और गैर मुनज़्ज़म माहिगीरी को एक अहम सिक्योरिटी और इक्तसादी खुदमुख्तारी के मसले में तब्दील कर चुकी है। FAO भी इस बात पर जोर देता है कि ख़ासतौर पर कीमती टूना मछली के ज़खायर को ज़रूरत से ज़्यादा और गैर मुनज़्ज़म शिकार से बचाया जाना चाहिए। इसलिए चीन के साथ तजारती हजम में इजाफे के साथ साथ लाइसेंसिंग और बहरी जहाज़ों के ट्रैकिंग की सलाहियत को बैक वक्त तरक्की देना नागुजीर हो गया है। बसूरत दीगर बरामदात का फैलाव सोमालिया के समंदरी वसायल पर उसके कंट्रोल को मजबूत करने के बजाय गैर मुल्की बेड़ों की सरगर्मियों को बढ़ाने का एक नया दबाव पैदा कर सकता है। यह माहिदा चीन अफ्रीका ताल्लुकात में वसी तर तब्दीली का सोमालिया पर अक्स भी है। अफ्रीकी ममालिक के लिए बीजिंग की ज़ीरो टैरिफ पेशरफ्त इन तनकीदों का जवाब देती है जो तवील अरसे से चीन के हक में यकतरफा तजारती ढांचे पर की जा रही हैं, और उसका मकसद अफ्रीका से ज़रई मादनी और समंदरी मसनूआत की दरामदात को बढ़ाना है। दूसरी तरफ इस प्रोग्राम तक रसाई को चीन के साथ सफारती ताल्लुकात की शर्त से मशरूत करना ये भी जाहिर करता है कि इस इकतसादी पेशरफ्त का एक ऐसा रुख भी है जो अफ्रीका में बीजिंग की सफारती पोजीशन को मजबूत करता है। लिहाजा सोमालिया चीन माहिगीरी प्रोटोकॉल महज एक बरामदी माहिदा नहीं है, बल्कि ये एक नया ताल्लुकाती मैदान है जहां चीन की बड़ी मार्केट और सरमायाकारी की सलाहियत और सोमालिया की अपने समंदरी वसायल को इकतसादी तरक्की में बदलने की ख्वाहिश आपस में मिलती हैं। सोमालिया के लिए कामयाबी का मयार ये नहीं होगा कि वो चीन को कितनी मछली बेचता है, बल्कि ये होगा कि इस अमल के आखिर में वो अपने माहिगीरी के बेड़े, निगरानी की सलाहियत, बंदरगाहों और मकामी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को किस हद तक तरक्की देने में कामयाब रहता है। उर्साम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जियोलू का इस मौजू पर तजिया हमने पेश किया। अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शोरश ज़दा अफ्रीका।